0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो। इन दिस एरा ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेलुलर फोन्स हैव बिकम मोर ऑफ अ नेसेसिटी दैन अ लग्जरी। इन स्पाइट ऑफ सेलुलर फोन्स हैविंग सेवरल पॉजिटिव फीचर्स, दे हैव अ लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स टू।